0: 啊！哎呀！
1: बटा टिक्का मतलब
2: पोटैटो पोटैटो
1: मेरा छोटा सा
2: पोटैटो
1: पोटैटो
3: पोटैटो
4: Don't move your head.